पल हरे खन प्रलो छैन हतार नैरा होय आजु निवने बछिजी तार मुई पिबा मिमामी मार्वलरी प्रिवा बिरा देसी सर मुबाब गंगा आग ग्यालरी।